0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद करना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। और दोस्तों अगले कार्यक्रम की हमारी पेशकश रहेगी
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: DS मथुरा चाहिए
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: समझना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
4: हाँ माँ, बेटा पापा को हार्ट अटैक आया है।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: राधे तू बड़ भागी कौन तपस्या की

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: पसंदना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों, अभी हमने सुना भक्ति संगीत के दौरान अनेक भजन रचनाएं। और दोस्तों, अब चलते हैं हम पुराने फिल्मी गीतों की ओर। दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।

Thank you.

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। और दोस्तों अगले कार्यक्रम की हमारी पेशकश रहेगी हेलो फरमाइश। दोस्तों इस कार्यक्रम को आप द्वारा सुना जाएगा 10 बजे।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ स्वागत है आपका आपकी फेवरेट सेगमेंट सफरनामे में। आज हम सफरनामे में बात करने जा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बेमिसाल जोड़ी के बारे में। 70 और 80 के दशक में एलपी का सामान्य अर्थ लिया जाता था लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड, और इसके अलावा एक और अर्थ हुआ करता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसका एक सीधा मतलब यह भी था उस दौर में ज्यादातर फिल्मों के जो लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड प्रदर्शित होते थे उनमें बहुतायत में एलपी ही बतौर संगीतकार मौजूद रहते थे। लक्ष्मीकांत को डालकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर संगीत के एक लोकप्रिय युग का सृजन किया था। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। लक्ष्मीकांत जी का जन्म 3 नवंबर 1937 में हुआ था। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बचपन के दिनों से ही लक्ष्मीकांत जी का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की। इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत जी ने संगीत समारोह में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। आगे चलकर वाद्य यंत्र मंडोलिया बजाने की शिक्षा बाल मुकुंद इंदौरकर से ली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में फिल्म जगत में अपने संगीत का लोहा मनवा कर ही माने। अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के रूप में उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, चलिया और दिल तेरा हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी पर संगीत का ऐसा जुनून था कि मशहूर निर्माता निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की क्लासिकल फिल्म पारस मणि ने उनकी तकदीर बदल कर रख दी थी और फिर पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। प्यारे लाल जी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा। उनकी माँ का देहांत छोटी उम्र में ही हो गया था। उनके पिता पंडित राम प्रसाद जी ट्रम्पेट बजाते थे और वो चाहते थे कि प्यारे लाल वॉयलिन सीखें। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। वो घर घर जाते थे जब भी कहीं उन्हें बजाने का मौका मिलता था और साथ में प्यारे लाल जी को भी ले जाया करते थे। प्यारे लाल जी का मासूम चेहरा सबको आकर्षित करता था। एक बार पंडित जी उन्हें लता जी के घर ले गए। लता जी प्यारे लाल के वॉयलिन वादन से इतनी खुश हुई कि उन्होंने प्यारे लाल को 500 रुपए इनाम में दिए, जो जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। वो घंटे वॉयलिन का रियाज करते, अपनी मेहनत के दम पर उन्हें मुंबई के रंजीत स्टूडियो में ऑर्केस्ट्रा में नौकरी मिली, जहां उन्हें 85 रुपए मासिक वेतन मिला। अब उनके परिवार का पालन इन्हीं पैसों से होने लगा था। उन्होंने एक रात्रि स्कूल में 7वीं ग्रेड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर 3 रुपए की मासिक फीस उठा पाने की असमर्थता के चलते उन्हें वो छोड़ना पड़ा। मुश्किल हालातों ने भी उनके हौसले को कम नहीं किया। वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। अपने संगीत के दम पर अपने लिए नाम कमाना और देश विदेशी यात्रा करना उनका सपना था। आज सफरनामे में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6।
1: क्या बात है, बड़ा ही ताजगी भरा गाना सुना आपने रेडियो DS 89.6 पे। और आप सोच रहे होंगे कि ओए होए होए, बहुत ठंड है यार गंगापुर सिटी में, क्या करे। सुनो, हम सिर्फ इंसान ही भैया ठंड के चपेट में नहीं आते। वो आईफिल टावर तो आपको पता ही होगा, जो इटली पेरिस में है ना, बिल्कुल हर साल ठंड के दौरान भैया वो 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, मत करो, आपकी मर्जी है। वैसे एक और फैक्ट बताता हूँ कि ठंड के दौरान अगर आप मुझे 1 घंटे हेडफोन लगा के, मुझे नहीं किसी को भी, हेडफोन लगा के सुनते हो, गाने सुनते हो,

0: गुना तक भैया बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है कि आप मुझे सुनना बंद कर दो। नहीं भैया, मुझे सुनते रहोगे तो एक घंटे में आपके सारे टेंशन भी गायब हो जाएंगे। तभी तीन गाने सिर्फ आपके लिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: बहुत ही प्यारा अमेजिंग गाना सुना आपने रेडियो डीएस 89.6 पे। और अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि इंसान यानी कि मैं यानी कि आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब होते हैं? अब अगर आपका जवाब है सोते वक्त, तो आप गलत हो, क्योंकि सोते वक्त हम सपने देख रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है चलते वक्त, तो भी आप गलत हो, क्योंकि हम चलते वक्त अपने स्टेप्स गिन रहे होते हैं। अगर आपका जवाब है नहाते वक्त, तो आप सही हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिएटिव इंसान शावर लेते वक्त या नहाते वक्त होता है। अब अगर आप बहुत दिनों से क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहे हो, तो इसका एक ही भैया रीजन है कि आपने नहाया नहीं। अब आप बोलोगे, नहीं यार गंगापुर सिटी में ठंड बहुत है, तो क्या करे, कुछ नहीं, गाने सुनो।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: गाने सुन रहे थे तो मेरे को लगा कि शायद आप ध्यान से मेरे दो लाइंस भी सुन ही लोगे। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और पेश करता हूं आपके खिदमत में नजरों से जुदा हुआ ना, नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, ना नजरों से जुदा हुआ ना दिल से जुदा हुआ, यू अलविदा हुआ भी तो क्या अलविदा हुआ, हुआ नहीं हुआ कोई सेंस बन रहा है इस बात का, नहीं बन रहा, बनना भी नहीं चाहिए क्योंकि अलविदा कह के मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था, कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कहा रेडियो DS 89.6 पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.

0: फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ एक कहानी उस लेजेंडरी एक्टर की जिसने है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं इस गीत को अपने अभिनय के दम पर एक सदाबहार हिट सॉन्ग बना दिया जिसने न सिर्फ हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया बल्कि एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर दोनों की भूमिका में कई सारे नए कलाकारों को एक उड़ान दी जिसे पूरी दुनिया मनोज कुमार के नाम से जानती है। जी हाँ, आज सफरनामे में हम बात करने जा रहे हैं मनोज कुमार साहब के बारे में। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। मनोज कुमार की पैदाइश 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुई थी। विभाजन के समय का परिवार दिल्ली के शरणार्थी कैंप में आकर रहा। कुछ दिनों बाद दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में जाके वो बस गए। उनके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। फिल्मी जगत में कदम रखने के साथ ही उनके नाम बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मनोज कुमार, उसके बाद भारत फिल्म से हासिल स्टारडम से इन्हें भारत कुमार नाम से भी जाना जाने लगा। 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। मनोज कुमार साहब के अभिनय का सितारा निर्माता निर्देशक विजय भट्ट की 1962 में प्रदर्शित क्लासिकल फिल्म हरियाली और रास्ता में चमका। फिल्म में उनके अपोजिट माला सिन्हा थी। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। 1964 में उनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई थी, वह कौन थी। 1965 में ही मनोज कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म गुमनाम भी आई। इस फिल्म में रहस्य रोमांस के ताने बाने, मधुर गीत संगीत और ध्वनि का कल्पना में इस्तेमाल किया गया था। 1965 में ही उन्हें विजय भट्ट की फिल्म हिमालय की गोद में काम करने का मौका मिला, जो टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर के धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। मनोज साहब की बुआ जी के लड़के पहले से ही बॉलीवुड में निर्देशक के तौर पर काम कर रहे थे। लेखराज भाकरी एक दफा अपनी एक फिल्म तांगे वाले के प्रीमियर के दौरान दिल्ली आए थे। तब उन्होंने मनोज कुमार को देखते ही बोला कि तू तो हीरो लगता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया तो बना दो हीरो। इस पर लेखराज भाकरी ने मनोज साहब को मुंबई बुला लिया। मुंबई आने के बाद एक के बाद एक करके दिन, हफ्ते और महीने गुजरने लगे, मगर 6 महीने तक मनोज साहब की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने भाई से पूछ सके कि कब हीरो बना रहे हो। आखिरकार मनोज साहब ने एक दिन हिम्मत जुटाकर लेखराज भाकरी से पूछ ही लिया कि मैं हीरो कब बनूंगा। इस सवाल के कुछ दिनों बाद लेखराज ने मनोज कुमार को अपनी एक फिल्म फैशन में एक छोटा सा रोल दिया, जिसके बारे में मनोज कुमार ने कभी सोचा नहीं था। मनोज साहब की बुआ के लड़के यानी लेखराज भाकरी ने महज 19 साल के मनोज कुमार को इस फिल्म में 90 साल के भिखारी का किरदार दिया था। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: पहुंच जाओगे और माइक्रोवेव में अंगूर डाल दोगे, क्योंकि अंगूर दूर से अंगूर खट्टे होते हैं और माइक्रोवेव में अंगूर फटते होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

ये साइंटिस्ट कुछ भी कर रहे हैं आजकल, ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और अमेरिका के फ्लोरिडा में साइंटिस्टों ने एक ऐसा रोबोट, एआई रोबोट बनाया जो हमारे साथ बॉक्सिंग कर सकता है। यार इस बॉक्सिंग वाले रोबोट का नाम चैट जीपीटी नहीं, चाटा जीपीटी होना चाहिए। और हाँ, इसे हराने के लिए भैया अपर कट की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पावर कट की जरूरत है। पर फिलहाल आप गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: समझ है?
1: बढ़िया
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: अच्छा ठीक है पर फिलहाल जाने का समय हो गया। ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस। और इंडिया के बेंगलोर की एक लेडी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि उनकी पास सबसे ज्यादा दांत है 38। अब ये लेडी के बारे में ना तो मैं कुछ बोल सकता ना आप कुछ बोल सकते, हम सिर्फ दांत दे सकते। फिलहाल गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। सफरनामे में हम आज बात करने जा रहे हैं अभिनेत्री नूतन की। अभिनेत्री नूतन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म छबीली का निर्माण नूतन की माँ शुभ्रा समर्था ने ही किया था और इसमें उन्होंने अपनी दोनों बेटियों यानी नूतन और तनुजा को लिया था। दोनों बहनों की साथ में ये आखिरी फिल्म थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के कई स्टेज शो में नूतन जी ने गाने गाए हैं। फिल्म चलिया का वो गीत तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, ये गीत नूतन जी की आवाज में ही रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नूतन जी की अदाकारी के तिलस्म को अगर जानना है तो उनकी अभिनीत फिल्में बंदिनी, सीमा, सुजाता देखिए। नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई है। आमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ बलराज सहानी जी और शोभा खोटे थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ, देवानंद जी के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता, दिलीप कुमार के साथ कर्मा जैसे कई बेहतरीन फिल्में नूतन जी ने दी हैं। 89.6 DSFM पर इन फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत पेश है खास आपके लिए।
1: 89.6 पे रेडियो DS।

0: दीवाना क्या कहेगा,
1: दीवाना क्या कहेगा।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाली अभिनेत्री, सशक्त और प्रभावशाली किरदारों से सबका मन मोह लेने वाली एक्ट्रेस को 89.6 DSFM का प्यार भरा सलाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे, यानी 89.6 DSFM पे। मैं तनिषा आपके साथ।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है सफरनामे का। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवंगत प्रदीप कुमार के बारे में। दिवंगत प्रदीप कुमार का नाम आते ही जहन में शाही अंदाज और नवाबी नजाकत वाले नायक की इमेज बन जाती है। मुगल पीरियड को दर्शाने वाले फिल्मों के हीरो के रूप में भी फिल्मकारों की पहली पसंद हुआ करते थे। लंबा कद, गरिमामय मुस्कान, शाही चाल और धीर गंभीर आवाज के वो धनी थे। प्रदीप कुमार की पॉपुलैरिटी में उनकी फिल्मों के गीत संगीत का अहम योगदान रहा है। आज हम आपको सुनाएंगे उन पर फिल्माए गए गीतों को। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ फिल्मिस्तान की सुपरहिट फिल्म नागिन के सभी एक दर्जन गीत अपने दौर में लोकप्रियता के पायदान पर सबसे ऊपर रहे। हेमंत कुमार का गाया ऐसा ही एक गीत है तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। प्रदीप कुमार यह गीत नदी किनारे नहाती सुंदरी विजयंती माला के लिए गा रहे हैं। अनारकली और नागिन जैसी कई फिल्मों में हेमंत कुमार प्रदीप कुमार की आवाज बने, जबकि बाद में उनकी जगह मोहम्मद रफी साहब ने ली। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ फिल्म आरती में दो खूबसूरत

गीत प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माए गए हैं। एक रफी जी का सोलो अब क्या मिसाल दूं और रफी जी और लता मंगेशकर जी का युगल गीत आपने याद दिलाया। अब क्या मिसाल दूं की शुरुआत से ही हमारा ध्यान रफी की गुनगुनाहट पर अटक कर रह जाता है। बेहतरीन शायरी का बखूबी साथ देता है मीना कुमारी का लज्जा से भरा मुखड़ा। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। अब जो गीत आपको हम सुनाने वाले हैं वो रोशन के संगीत वाले इस गीत के शब्द बेहद खूबसूरती से रचे गए हैं। पांव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी। शहजादा खुर्रम बने प्रदीप कुमार की मोहब्बत के इजहार के लिए रफी की आवाज बिल्कुल फिट साबित होती है। खूबसूरत बीना रॉय लता की शहद भरी आवाज में इस अंदाज में जवाब देती है, हमको डर है कि ये तौहीन मोहब्बत होगी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ अब आपको सुनाने जा रही हूँ फिल्म बहू बेगम का वो गीत हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। आरती, चित्रलेखा और भीगी रात के बाद ये चौथा और आखिरी मौका था जब प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार का ट्रायंगल फिल्मी पर्दे पर दिखाई दिया। बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों की तकदीर चाहे जो रही हो, लेकिन इनमें से हर फिल्म के गाने मिसाल बन गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे।

0: Now Magic Radio DS 89.6.
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828995500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में हम बात करने वाले हैं फिल्मकार मुजफ्फर अली जी की, जिन्होंने कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं और कुछ कला फिल्म्स भी उनके खाते में दर्ज है। 1978 की फिल्म गमन के जरिए उन्होंने सिनेमा जगत में कदम रखा। इस फिल्म के संगीतकार थे जयदेव जी। आइए इसी फिल्म के कुछ अनोखे गीत सुनते हैं। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: 89.6 DSFM पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी तनीषा को। अभी जो गीत आपने सुना, रात भर आपकी याद आती रही, ये गाना छाया गांगुली जी की आवाज में है। इस फिल्म में जयदेव साहब जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार और छाया गांगुली जी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। लौटूंगी यही 89.6 DSFM पे, मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती। Radio DS.

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 1982 में आई फिल्म अर्थ के सारे गीत बहुत ही रोचक और लोकप्रिय हैं। जगजीत सिंह की रूहानी आवाज में फिल्म अर्थ के खूबसूरत गीत आपके लिए बैक टू बैक। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डियर्स।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। 1983 में शेखर कपूर की पहली फिल्म मासूम, जो अपनी कहानी को लेकर तो मशहूर थी ही, लेकिन उसके गाने भी अभी तक सभी की जुबा पे हैं, जिन्हें RD बर्मन जी ने अपने संगीत से सजाया है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना
0: है। अरे क्यों?
1: नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता।
0: बेटी देखिए, आप कुछ नहीं आ रही है, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता।
0: नहीं, आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?
1: हाँ।

0: वाह वाह वाह वाह, बुरे यादाश्त के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि कुछ दिन कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब आप रो रहे थे कि हम वर्ल्ड कप हार गए और अभी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। ओ चलो गाने एंजॉय करो। गाना कौन सा एंजॉय किया वैसे आपने? पछताओगे गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने को लिखा किसने था? जानी ने, और कंपोजिशन भी पराग ने किया। पर अब एंजॉय करो चार गाने बैक टू बैक सिर्फ आपके लिए। कहां? 89.6 रेडियो DSP।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है ओ बेदर्दिया. लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन प्रीतम ने, और मुझे भी गाना गाने का मन कर रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. अगर आज आपका बर्थडे तो बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट कहाँ क्रिएट किया गया था? किसी जर्मनी के बंदे ने पहली बार आज से 200 साल पहले बर्थडे केक काटा था. और दुनिया में हर रोज 15 मिलियन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करें. उनमें से अगर आप हो तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. फिलहाल बैक टू बैक 4 गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: ऊर्जा काली का गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में, लिरिक्स लिखा आनंद बख्शी ने और कंपोजिशन उत्तम सिंह के द्वारा, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट और रीअरेंज किया मिथुन ने। सुबह के 9 बज के ऊपर हो चुके हैं भैया और अभी तक दांत खिटखिटा रहे, ठिठुर रहे हो ठंड में। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो भैया क्या कर रहे हो, ठंड आ चुका है, विंटर्स आ चुके, दौड़ने जाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो और फिलहाल गाने सुनो। बैक टू बैक 4 गाने आपके लिए रेडियो DS89.6 पे।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS89.6 शहर की धुन. सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना. आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का. सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग. इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी. दिल से दिल तक.
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.

यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6
1: DSFM। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगा।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डी

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर के धुन। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। तेरा रे राम,
2: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।